0: मी सेशन सर की टेक्स्ट तक फरा तार उनका बोल कोरा को तुका मी फंडी लफा तक एवे एकी एकी कांत तक गुले मालूम मात एबे फुलुन ना कस्टमाइज वाने को तक रावा लेविगें टेक्स एकेडमी हिंगा वार मुहिम प्रोग्राम तक देन मी गे तुरुं मीरा के सोशल मीडिया के एक एक प्लेटफॉर्म तो गवे सार में मिदरनी मी टेकू के गानों तक आगावा तक मियाना इस्लाह होता होगे इतुरंग आदिवेस ऐहनी है मुहिमो टेको होगे टेको हागुले माउलो मातुता आप दुवेस हिस्सा करे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक की वेस टेक्स्ट का फरत का बेनुफुल करे विदाने प्लेटफॉर्म में एवेस कहाला यही तेरी कमर नो आता फनी लफे बेनुफुल एरा मी जोरी मना तक एचीस एफरा तक मी एरुम हुटे ने दत एम ए वागुता टेकुगे बायांत होशाला फैसा देखु म हम वर बडन हंदम फुलकों अरवा अब द स्टिक्स तक अफरा
1: देन हम मीरे अब द स्वडन हम वर बड रईतु ना हंदा को दे एकन तंग ए टेक्स्ट तक जे फरा तक ई हगीगतु ग अतुन दा इच डबल को दामस मेरो नुवात दे तो ति बेफलो से मी मागु ने विस्नाल जे कम ए दे तो देन कोमे कम के से बोय वके मुद्दत स्कंडाला फदा कन जे एक कुरी आला ति बेफलो मा कुरी में सम मीडिया तक गे से मालूमात से हिस्सा करवा डेडलाइन कैरीवा कन हंदा को दे वा हे मी ಅಳ್ಗಂಡ್ ಹಿತ್ತು ದಕ್ಕನ್ ಜೆ ಹೇಮಿ ಹುಣ್ಣೆ ಈಗ ಸಮಾಲ್ ವಾಮಿಸ್ ಲಿಬೆ ಫುರ್ಸತೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಇದತ್ತು
0: ಅಸ್ ಬಾರ ಬಡ
1: ಶುಕ್ರಿಯಂಗ ತ ಸೌದಿ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮಿಂಗೆ ಹುಂತೆ ನೆತ್ತಿ ಹಿಸಾಕಲು ಮಾಲು ಮಾತ್ ಕೊಳಂಗೆ
0: ಶುಕ್ರಿಯಂಗ

तब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: Love Fita. Love Fita.
1: Me Love Fita. मजा माहौल का हुट्ट में नेती फोरी के लव तक आए को.
2: Music change. Music change.
0: हम ऐकने लो दिए के मेगाहर्ट्स दिल ही अपने.
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
1: अंगर धोगे रेगंडो अग्गड फन रहेगा स्टूडियो इन वागुतो. लोईपा अलालुमा ओरुपाणी एकुका उलुमा दे लोपी वेरिं वी बालुतता.

अंदर में ना मैं लिबी फ़ायबॉय मैसेजेंगे तो दें मैं अंदर नवाले मैं वागु तो इव्विस लविंग इव्विस फरात कहाँ हाँ से कोल्लम बेनों का मवाना में फ़ुरसत मैं होल वाला नहीं और मैं के शो का बैंवर वां बेफ़रुन नोट कुरन दें लिबी फ़ाय मैसेज की स्टिल लविंग यू I know you probably hear this all the time, but this one is specially for you. Me, Libby, for a message, ki still loving you. And he wago to me, Scorpions, ke still loving you. And me, love against Dana. Nge to, adi vi sama me fursat me hulwa la fa fursat us eba oin. Or me nge show ga baveri vaan beinu vaanama. Nannot kurum ge fursat no ta. Waki loving ado haalam beinu vaakama vaanama. Messages kollam vi. Eh namas, waki farata kan haasa kollam vaan. Nge to, e love. ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಾತ ಕಂ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಎ ಲವೇಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಗ್ ನಾನ್ ನೋಬುಸ್ ಎ ಮಸಲೆನೆ ದೆಂಗ್ ಎ ಫರಾತಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾ ಲಿಬಾರಾತೆ ಲೀಲಿ ಮರಂಗಳುವಾನ್.

ओपेरा मी सोलस तेकेगे हरतौगा इटली गौफम म्यूजिक के बावते मशहूर ओपेरा कंपोजरुंगे तेरेगा क्लोडियो मोंटेवाडी मोत्सर्ट जोसेप्पे वर्डी आदि जाकोमो फद फन्नानु फाहाका कोल्लेवे